कुछ भी पहले ही दे दू वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के नाच ले बेबी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा

गाड़ी मैं लगाऊंगा तेरे घर के गेट पर, ठीक 11:15 तू होना जाइयो लेट पर, टाइम वेस्ट ना करियो मेरा बेबी, मुझको काम बहुत है, एंट्री का कोई चक्कर।

0: to dance in the Bahamas.
1: गाड़ी मैं लगाऊंगा तेरे घर के गेट पर ठीक 11:15 बजे तू होना चाहिए।

पटक पटक लौंडो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में वस्तु बटर खाए बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

करे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.

देख तुझको आए पसीना शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना चकली चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने ये तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास पे हमारे दोस्त शम्स आलम जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए।

0: रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद
1: अंडरग्राउंड
0: एनीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ. वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे.
2: मानेंगे 6000.

अवसर आती 10 बजे को हजार के मुख्य मुख्य समाचार सकियो हम भेट भोलि बिहान 9 बजे को हजार के समाचार में होने नीतिजल समय को समाचार सहयोगी साथी विशेष धन्यवाद दीद म श्रीराज महत्व समाचार बिताऊ नमस्कार शुभरात्रि।